संभालो ओ मरी मैया, आज इथे सारे चपेंद्या नि कन्हैया। ए लूट ही लेंगे माखन की कगरिया, आज बच न पाए कोई राह डगरिया।